0: फिल्म लाइन से लड़ाई की है और फिल्म लाइन से मैं तब काफ़ी फिल्म लाइन नहीं होती तो हम नहीं होते, रेडियो नहीं होता तो हम नहीं होते, रिकॉर्ड नहीं होते तो हम नहीं, एचएम भी है तो मैं सबका आभार मानती हूँ जो फिल्म लाइन ने हमको काम दिया, हमको नाम दिया, मैं इनका आभार मानती हूँ। लेकिन आभार मानने से पहले ये भी है कि तकलीफ भी उठाई हमने, बहुत बहुत तकलीफ उठाई। और तकलीफ माने काम का कोई टाइम ही नहीं होता था, जब मर्जी वो रिकॉर्डिंग करते थे और जितना मर्जी टाइम लेते थे, हम ना नहीं बोलते थे क्योंकि हमने काम लिया है तो उसको कंप्लीट करना हमारा काम है, तो हम ना नहीं बोलते थे। रात के 4 बजे 5 बजे कितने बजे छोड़ते थे, तब तक हम खाना नहीं खाते थे, चाय और बिस्किट के ऊपर रहते थे हम लोग, मैं कम अज़ कम रहती थी। और इसी तरह काम किया है कि जैसे शंकर जय किशन
1: जी
0: और मदन मोहन, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन।